ప్రాంతకాలీ నమస్కారాన్ని హార్దిక స్వాగత్ కార్యక్రమ జ్యోతిష్ భాస్కర్మన్ కార్యక్రమ జ్యోతిష్ భాస్కర్ లేదా సులభంగా ఆజ పని ఉపస్థితి వైశాఖ్యాసు మా జ్యోతిష్ ఆచార్య పండిత్ ప్రేమ ప్రసాస్వేది కార్యక్రమ జ్యోతిష్ భాస్కర్మన్ హామీలో జాని సరిచింది కార్యకర్త ఆజ తిథిమితి పంచాంగ మీ సాధి బర రాశిఫల్ రాశిఫల్ పచి హామీ తరగ भूत वर्तमान र भविष्यको विषयमा ग्रह दशा र भाग्यको विषयमा पनि जानकारी भने दिने गरेका छौं। पारिवारिक समस्या, वैदेशिक यात्रा, श्रीमान र श्रीमतीको दाम्पत्य जीवन, निसन्तानपन सम्बन्धीको समस्या, कालसर प्रयोगका समस्या, मांगलिक योगका समस्या, पितृदोषका समस्याहरू के कस्तो रहन्छ, भूत वर्तमान र भविष्यको विषयमा ग्रह दशा अनि भाग्यको विषयमा जानकारीका लागि 9845 02 6356 9205 02 6356 नम्बरमा तपाईँले आफ्नो र आफन्तको विषयमा ग्रह र भाग्यको विषयमा विशेष रूपमा जानकारी भने तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि जिज्ञासाहरू रहेका छन् भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क भने गर्दै गर्दोस्, म भने कार्यक्रमलाई अलिकति अगाडि बढाउनेछु र कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबाट विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा एकैसाथ कार्यक्रम ज्योतिष वास्तुलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ। हाम्रो एफएम 94 MHz भरतपुर चितवनबाट, चितवनको पहिलो सामुदायिक रेडियो हिटर चितवन 94.6 MHz रत्नगरबाट, इच्छाकामना एफएम 102.4 MHz इच्छाकामना कोरिटार चितवनबाट, रेडियो साइन 99.8 MHz समुद्र चितवनबाट, हाम्रो राष्ट्रिय एफएम 88.8 MHz भण्डार चितवनबाट, सामुदायिक रेडियो सुनवल 90.7 MHz सुनवल नवलपरासीबाट, सामुदायिक रेडियो जदली एफएम 97.2 MHz जदली सिन्धुलीबाट, रेडियो भुलेरी एफएम 102.5 MHz सोलेरी रोल्पाबाट, सामुदायिक रेडियो जलजला 96.4 MHz लिवाङ रोल्पाबाट, सामुदायिक रेडियो रेडियो मकनपुर 101.3 MHz छेटना मकनपुरबाट, रेडियो वर्षा 91.1 MHz मनगाउँ नगरपालिका सर्लाहीबाट, नानी एफएम 103.8 MHz बिरगञ्ज पर्साबाट, सामुदायिक रेडियो रेडियो बिहानी 97.6 MHz नीलकण्ठ धादिङबाट, सामुदायिक रेडियो रेडियो गोर्खा 92.8 MHz गोर्खा बजारबाट, असल साथी रेडियो 98.9 MHz पोखरा कास्कीबाट पनि कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु तपाईँले सुनेर साथ र सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ। भूत वर्तमान र भविष्यको विषयमा ग्रह दशा र भाग्यको विषयमा जानकारीका लागि 9845 72 23 र 9805 72 23 नम्बरमा सम्पर्क गर्दै गर्नुहोस्। मैले कार्यक्रमलाई अलिकति अगाडि बढाउँछु आजको तिथिमिति अनि पञ्चाङ्गबाट।

0: क्या कर रही है तर भी आ गया बावरठ।
1: कौन?
0: पता नहीं दारू पी के गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

0: 1 2 3 check.
1: तपाईंले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो स्पाइनो 89.8 मेगाहर्ट्ज।
2: सुर में गाना सीखिए पाधनीसा ऐप के साथ AI powered personal music feature from सारेगामा।